0: Vous écoutez à YoCollege Radio, la voix de la génération d'aujourd'hui.
1: Tú puedes ser un héroe al estar preparado para una emergencia. Primero, prepara un plan. Reúne a tu familia para planificar formas de cómo comunicarte con tus seres queridos después de una emergencia o planear una ruta de escape.
2: I am not fast.
1: Prepara un equipo de suministros. En caso de una emergencia, es importante contar con suficientes alimentos para 3 días. Y no te olvides de las pilas.
3: Low battery.
1: Visita ready.gov/niños para obtener más información. Patrocinado por FEMA y The Ad Council.
4: It's time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box. It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform for all students, faculty, and local voices to learn and practice the art of news gathering. PB staff are the watchdogs for the Jamaica community and give a voice to the college's student body. Get experience for life in the real world. Report and write with us.
5: Dhoka dhadi chetavani. Apna kyuni login password ya MF. A. Kabhi saajha na kare. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें अपने पासवर्ड या एमएफ ए कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी एमएफ ए अनुरोध का उत्तर न दें संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या एमएफ ए कारक साझा कर दिया है किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है
6: What up, it's Dia Finesse, Didi Finesse that is, and this is YCRadio.org, the voice of today's generation.